जाम ताकि धूमधाम राइड सफन नया ईवी मेरो टियागो ईवी संग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful.

रोने दे आज हमको, दो आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता।